0: एक साल बाद वेलक्रो टेप्स को मार्केट में मुतारिफ करवाया गया, लेकिन उन्हें वो तवज्जो हासिल नहीं हुई जिसकी उनके मोजिद को तवक्को थी, क्योंकि वेलक्रो टेप्स का वेलक्रो ब्रांड, जो फ्रांसीसी अल्फाज वेलवेट और हुक से माखूज है, पहले ही दो प्रांग हरीफ ईजाद कर चुका था। जूतों के तस्मे और जिप, मेस्ट्रॉल अपनी मसनूआत को अमरीका ले गया और महसूस किया कि तेज़ी से बढ़ती हुई एरोस्पेस इंडस्ट्री, ख़ास तौर पर खलाबाज, वेलक्रो से फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि वह आसानी से अपने स्पेस सूट पहन सकें और उतार सकें। डाइविंग सूट बनाने वालों ने जल्द ही उसकी पैरवी की और जल्द ही इसकी सूट्स और खेलों के दीगर सामान में हुक और लूप टेप इस्तेमाल होने लगे। वेलक्रो, जिसे इब्तदाई तौर पर जिपर के बगैर जिप के नाम से मार्केट किया गया था, वक्त के साथ साथ बच्चों के कपड़ों की मसनूआत में इस्तेमाल होने लगा और 1960 की दिहाई के वस्त तक मेस्ट्रॉल का कारखाना सालाना 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा वेलक्रो टेप्स तैयार कर रहा था। वेलक्रो टेप इस फैशन डिज़ाइनर की कामयाबी के बाद एक फैशन आइकॉन बन गया, जिसे फैशन शो के लिए आखिरी लम्हात में अपने कपड़े मुकम्मल करने पड़े, लेकिन जब उसके इस्तेमाल के लिए बटन ख़त्म हो गए तो उन्होंने मेज़ पर रखी वेलक्रो टेप का सहारा लिया। स्विस मोजिद की वेलक्रो प्रोडक्शन में 1978 तक तकरीबन इजाराधारी थी, लेकिन जब वो अपने पेटेंट के हकूक की तजदीद करना भूल गए तो सबसे पहले चीन और जनूबी कोरिया में तैयार की जाने वाली सस्ती तकलीद ने मार्केट को भर दिया और फिर मकामी सनतकार हर मुल्क में अपने अपने ब्रांड्स के साथ नमूदार हुए। वेलक्रो टेप्स, जो आज दुनिया की सबसे ज़्यादा कारआमद ईजादात में से एक हैं, हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाती हैं, ना सिर्फ कपड़ों या जूतों में बल्कि सजावट की मसनूआत से लेकर दिल की सर्जरी तक बहुत से मुख्तलिफ शोबों में ये देखी जाती है। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: अहम इजादात।

0: नेतन्याहू ने टेलीफोन पर राबता किया है। इस राबते में 27 अक्टूबर को इसराइल में होने वाले आम इंतखाबात और 3 नवंबर को अमरीका में होने वाले कांग्रेस के वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल ईरान के खिलाफ नई कार्रवाई के इम्कान पर गौर किया गया। नेतन्याहू ने बातचीत में अपनी इंटेलिजेंस मालूमात के हवाले से खदशात का इजहार किया कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा बहाल करने के लिए तशवीशनाक इकदाम कर रहा है। ये मुलाकात इससे पहले हुई जब ट्रंप ने कहा था कि वह इंतखाबात से पहले ईरान पर हमला नहीं करेंगे, मगर बताया गया कि इसराइल और अमरीकी अफवाज इसी इम्कान के पेश नज़र चौकस हैं कि ट्रंप अपनी राय बदल सकते हैं। एक अमरीकी एहलकार जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू एक बार फिर कदम उठाने के मौक़िफ़ पर लगते हैं। उन्होंने इस मौजू पर ट्रंप से कई बार बात की और ट्रंप ने कहा कि तुम बेहतर जानते हो नेतन्याहू, अपनी तैयारियाँ करो, लेकिन दर हकीकत कोई कतई फैसला नहीं है। अपनी तैयारियां करो का मतलब शायद अभी, शायद बाद में या शायद कभी भी हो सकता है। ज़रा ने बताया कि ट्रंप और नेतन्याहू ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ईरान पर हमलों के जारी रहने के बारे में कई बार बात की और नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के अस्करी और जौहरी मराकज़ को निशाना बनाने का जिक्र किया है। एक इसराइली एहलकार ने कहा कि शुरू में ट्रंप हमले जारी रखने के लिए रजामंद दिखाई दिए, मगर बाद में उन्होंने इस मामले में मोहतात रवैया अपनाया, जबकि एक अमरीकी एहलकार ने कहा है कि ट्रंप इस बारे में वाज़ेह नहीं है। मजीद बरआम हुकाम ने कहा है कि नेतन्याहू ने हालिया दिनों में अपने मुशीरों के साथ मुलाकातों में बताया कि यह इम्कान ट्रंप ने उठाया था कि ईरान पर नई कार्रवाई की जा सकती है, और ऐसी सूरत में ट्रंप ने इसराइल से हमलों में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की है।
1: इसराइल वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली से वाक़या पनाह गज़ीन कैंपों से बेदखल होने वाले फ़िलिस्तीनियों की वापसी मुस्तरद कर दी। आज़म जाहिर किया है कि इसराइली फौज दस्ते इस इलाके पर मुस्तकिल कब्जा बरकरार रखेंगे। कि दफ्तर की तरफ से जारी करदा वीडियो फुटेज के मुताबिक इनके बयान वज़ीर-ए- दफा इसराइल कार्ट्स और सीनियर कमांडर्स के हमरा तल करम पनाह गज़ीन कैंप के करीब एक दौरे के दौरान सामने आए। इतवार के रोज़ इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हदायत की थी बेघर फलस्तीनियों की इन इलाकों में वापसी को मुमकिन बनाने के इकदाम के लिए एक बाकायदा टाइम टेबल जमा कराए। इस फैसले पर बराह रास्त बात करते हुए नेतन्याहू ने दावा किया रिहायशी नहीं है, ये दहशत गर्द है।
0: सऊदी अरब के दारुलहुकूमत रियाज के रिहायशी इलाकों में फजा में किए गए 2 क्रूज़ मिसाइलों का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी और 15 मकानात को नुकसान पहुँचा है। सऊदी शहरी दिफा ने ऐलान किया है कि हूसी मलेशिया की तरफ से दागे गए मिसाइलों को मंगल के रोज़ मार गिराया गया, जिसके मलबे की जद में आकर 2 ख्वातीन, 1 मर्द और 1 बच्चा जख्मी हुए। इमदादी टीमों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने और मुतासर मकामात को महफूज बनाने के लिए रवाना कर दिया गया।
1: बताया गया है कि शाम के वस्ती इलाके में वाकई सुबह में नामालूम अफराद के हमले में 4 सिक्योरिटी अहलकार हलाक हो गए। शाम की सरकारी खबर एजेंसी सना की रिपोर्ट के मुताबिक शनाख्त नामालूम होने वाले मुसल्ला अफराद ने हुमा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर धावा बोल दिया। हमले में 4 सिक्योरिटी अहलकार जान बाग हो गए। वाकये के बाद मुलजमान की निशानदेही गिरफ्तारी के लिए वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।
0: मशरक़ी भारत की रियासत बिहार में दरियाए गंगा में मुसाफिर कश्ती उलटने से कम अज़ कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं, जो कि तमाम 15 साल या उससे कम उम्र के बच्चे थे। ज़िलाई हुकाम के मुताबिक जाए वकूआ पर रवाना की गई हंगामी इमदादी टीमों ने दरिया से 13 लाशें निकाल ली हैं, जबकि 6 से 7 मुसाफिरों को पानी से ज़िंदा बचा लिया गया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को इंतहाई दर्दनाक करार दिया और सोगवार ख़ानदानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है।
1: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। रूस ने यूक्रेन के दारकुमत कीफ और हरकीफ इलाकों में तमाम मौसलाती इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद हमले किए। रूस के वजारती दफाई वजारत के बयान में कहा गया है कि रूसी फौज ने रात के औकात में जमीन से दागे गए आला दुरुस्ती के हामिल हथियारों तील फासले के मुसल्ला ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर हमले किए और यूक्रेनी फौज अस्करी संतीदार को इस्तेमाल करता तवानाई और मौसलाती ढांचों को हदफ बनाया। बयान में कहा गया है कि कीफ में रूसी फौज के बारे में इतला जमा करने के लिए इंटरनेट डाटा ट्रैफिक का मुंतकिल होने के मकाम पर मुतयन ATM यूक्रिस बैंक डाटा प्रोसेसिंग सेंटर अस्करी संतीदारों को बिजली फ्राहम करने वाले तारनिस्ताओं कीफ थर्मल पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया। कीफ खत्ते में अस्करी लॉजिस्टिक्स इदारों को बिजली फ्राहम करने वाला कीफ थर्मल पावर प्लांट ट्रिपोली थर्मल पावर प्लांट और कीव पर की ट्रांसफार्मर मरकज को हदफ बनाया गया, जब खारकीव इसके इतराफ में जिमिस का थर्मल प्लांट पावर प्लांट्स भी निशाना बने। वजार के एक और बयान में बताया गया कल शब बर मास्को इसके इतराफ में मुख्त इलाकों में रूसी फजाई दफाई निज़ाम ने 902 यूक्रेनी ड्रोन तबाह कर दिए। दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर व्लादिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा बुध को होने बड़े हमले जिनके नतीजे में यूक्रेन में 6 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए, इस बात को जाहिर करते हैं मास्को ने अमरीकी तजवीज करता तवानाई जंगबंदी को वाज़ह तौर पर नजरअंदाज किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा यह ऑपरेशन बिल्कुल जानबूझकर किया गया था, रूस ने पहले कभी भी अमरीका को इस कदर खुले अंदाज में नजरअंदाज नहीं किया था।
0: अक़वामे मुत्तहिदा ने बहिरा असद में तिजारती जहाज़ों पर होने वाले ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की है और खबरदार किया है कि सिविलियन जहाज़रानी, आलमी गजाई सप्लाई चेन, अशिया की कीमतों में इजाफा और मल्लाहों की जिंदगियों को ये खतरे में डाल सकते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जमान स्टीफन डुजारिक ने सहाफ़ियों को बताया कि हम यकीनन सिविलियन जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत करते हैं, ख़ासतौर पर उस हालिया हमले की जो बल्गारिया के साहिल के करीब पेश आया है। डुजारिक ने कहा कि अनाज और दीगर ज़रूरी अशिया ले जाने वाले जहाज़ों पर हमलों में इजाफा हुआ है, जिसके असरात दुनिया भर की मंडियों में कीमतों पर पड़ रहे हैं।
1: रूमानी यूक्रेन के साथ अपनी सरहद के करीब 3 ड्रोन्स का पता चलने के बाद 2 F-16 जंगी तैयारे फजा में रवाना किया, एक फौजी हेलीकॉप्टर तैनात किया। ड्रोन्स की शनाख्त यूक्रेनी शहर वेलकोव के करीब की गई जो रोमानिया की सरहद और डेन्यूब डेल्टा के नज़दीक वाक़ है। रोमानी को काम ने जिला तुलचा के शुमाली हिस्से के रहायशियों के लिए आरव अलर्ट वार्निंग जारी की कि फजा से एशिया नीचे गिर सकती हैं। सूरत हाल की निगरानी के लिए रोमानी की फजाइय के 2 F-16 जंगी तैयार ने उड़ान भरी, जबकि सरहदी इलाकों में निगरानी के लिए एक पोली फौजी हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया। वजार का कहना रडार के डाटा से इल्म हुआ कि ड्रोन यूक्रेनी फजाई हदूद में ही रहे, उन्होंने रोमानी की सरहद अबूद नहीं की। बाजा हुकाम की जानब से रोमानी के सरजमीन को किसी फौरी खतरे की अदम मौजूदगी का तय करने के बाद अवामी वार्निंग वापस ले ली गई। नाटो यूरोपियन का रुकन मुल्क रोमानिया दरिया डेन्यूब के साथ यूक्रेन की सरहद शेयर करता है, इसने अपनी सरजमीन के करीब ड्रोन सरगर्मी के जवाब में 12 फौजी तैयारे फजा में रवाना किए हैं। सपेशतर भी दरिया डेन्यूब के साथ यूक्रेनी बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी हमलों के बाद रोमानिया के सरहदी इलाकों से ड्रोन के टुकड़े मिले थे। बुखारेस्ट ने इन खदशात के पेश नजर खत्ते में फजाई निगरानी दफाई इकदाम को मजबूत कर दिया ताकि ये तनाजा नेटो की सरहदों तक न फैल जाए।
0: मेक्सिको में समुद्री तूफान साइमन और इस्तफाई तूफान रेचल की लाए हुई शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीका कौमी तूफान मरकज के जारी करदा बयान के मुताबिक साइमन समुद्री तूफान की शिद्दत इब्तदा में पहले दर्जे की थी, जिसमें बतदरीज इजाफे के बाद मैक्सिको के रियासतों नियारित और सेनालुआ में शदीद बारिशें शुरू हो गईं। मैक्सिको के हुकाम ने दरियाओं में आबी सतह की बुलंदी और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया है। समुद्री तूफान साइमन और उस्तवाई तूफान रेचल से मुतासर इलाके ग्यूरेरो और रियासत बाखा कैलिफोर्निया के शहर एनसेनादा में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस 6 अफराद हलाक और 5 लापता हो गए हैं। एनसेनाडा में एल पेपला नाले के करीब तकरीबन 300 फौजी अहलकारों की शिरकत से तलाश और बचाव की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इलाके में सैलाबी रेलों ने गाड़ियों और रिहायशी मकानात को भी नुकसान पहुँचाया है। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।
1: سامعین صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے مخاطب ہیں، لیجیے اب اشل آئیمان کی آواز میں ترکی کی سماعت کروائیے۔ یہ گانے کے بول ہیں خرانک لاردا سیو ایم ایم سینٹ

जब एक भट्टी के अंदर का दर्जा हरारत 1400 डिग्री के करीब पहुंच जाता है तो आम खाम माल किस चीज़ में बदल जाता है। रात को रोशन करने वाले एक चिराग में, किसी दस्तरखान को सजाने वाले एक रंगीन जाम में, या सदियों तक एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होने वाले किसी फन पारे में। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हम फिलिस्तीन के जुनूब में वाक़ शहर अल खलील का रुख करते हैं। तसव्वुर करें कि आप अल खलील की तंग पथरीली गलियों और पुराने बाजारों के दरमियान घूम रहे हैं। उन तारीखी इमारतों के पीछे हर अल कज़ाज़ैन यानी शीशा घरों का मोहल्ला फैला हुआ है, जहाँ किसी ज़माने में शीशा बनाने वाले कारीगर बड़ी तादाद में रहा करते थे। यहाँ आग के सामने बैठ कर काम करने वाले इन उस्तादों की कहानी महज एक पैदावारी तकनीक की कहानी नहीं है, बल्कि ये फिलिस्तीन की सकाफती और इक्तसादी तारीख का एक अहम हिस्सा है। अल खलील के पुराने शहर को 2017 में यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा फहरिस्त और ख़तरे से दो चार आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया था। बाद अजां 2025 में अल खलील शहर ने दस्तकारी और लोक फ़नून के शोबे में यूनेस्को के तख्लीकी शहरों के नेटवर्क में शमूलियत इख्तियार की। इन इमारतों और गलियों में छुपा हुआ ये विरसा नस्ल दर नस्ल काम करने वाले कारीगरों के हाथों में आज भी जिंदा है। फिलिस्तीनी सरजमीन पर शीशे की तैयारी की तारीख कदीम दौर तक जाती है। अल खलील में शीशा साजी खासतौर पर रोमन दौर से परवान चढ़ी और क़ुरून वुस्ता में उसे एक अहम और मशहूर फ़न की हैसियत हासिल हो गई। बाहिरे रूम के मशरक़ी हिस्से की फिनिशियन दुनिया से मंसूब रंगीन शीशे की तैयारी उस तकनीकी विरसे की बुनियाद थी। कबल अज़ मसीह पहली सदी के दूसरे निसफ हिस्से में सामने आने वाली शीशा फूकने की तकनीक ने इस सनत में एक बड़ा इनकलाब बरपा किया, जिसने सांचों के जरिए शीशे को शक्ल देने के बजाय कारीगर की सांसों से ढलने वाले एक शाहकार में बदल दिया। अल खलील ने उस कदीम विरसे को संभाला, अपनी वर्कशॉप्स कायम की, तजारती नेटवर्क बनाए और वक्त के साथ साथ इस सनत का मरकज बन गया। शीशे की बुनियादी अज्जा रेत, सोडा और चूना थे। अल खलील की रिवायती सनत में शहर के करीबी इलाकों से हासिल करदा रेत, बहरा मुर्दार के इलाके से हासिल करदा सोडा ऐश और भट्टियों के लिए मकामी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। अल खलील के शीशे की सबसे मुनफरद खसूसियत उसके रंग थे। गहरे नीले रंग के लिए कोबाल्ट का मादनियात और फिरोजी रंग के लिए कॉपर ऑक्साइड इस्तेमाल किया।

जाता था। कारीगर धात की फूंक मारने वाली पाइप के सिरे पर पिघला हुआ गर्म शीशा लेता है, उसे घुमाता है और अपनी सांसों के कंट्रोल दबाव से इस माया को फैलाता है। इसके बाद वो दस्ती औजारों की मदद से उसे हतमी शक्ल देता है। चूंकि शीशे का दर्जा हरारत, उसका गाढ़ापन और ठंडा होने की रफ्तार इस पूरे अमल पर बराह रास्त असरअंदाज होती है, इसलिए एक कारीगर यह तजुर्बा किसी लिखी हुई किताब या नुस्खे से नहीं बल्कि बरसों तक भट्टी के सामने बैठकर अपने उस्ताद से सीखता है। अलखलील की शीशा साजी का यह फन सदियों तक तिजारती रास्तों के जरिए परवान चढ़ता रहा, खास तौर पर ममलूक दौर में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान मशरकी बहरा रूम में शीशे की पैदावार ने एक बार फिर जोर पकड़ा। अलखलील ने दमिश्क, उर्दुन और मिस्र के साथ कायम तिजारती ताल्लुकात की बदौलत अपनी मसनूआत को इलाकाई मंडियों तक पहुँचाया। उस्मानी दौर में भी फिलिस्तीन और अनातोलिया के दरमियान तिजारती रास्तों ने इस रवायती सनत को सहारा दिया। अलखलील में सुराहियाँ, ग्लास, चराग, चूड़ियाँ और आरायशी अशिया तैयार की जाती थीं। ये मसनूआत यरूशलम, नाबलुस और काहिरा जैसे मराकज़ में भेजी जाती थीं और याफा बंदरगाह के जरिए यूरोप की मंडियों तक पहुँचती थीं। 19वीं सदी के वस्त के शरई अदालत के रिकॉर्ड में अलखलील में शीशे के 7 कारखानों का जिक्र मिलता है, जबकि सदी के आखिर के रिकॉर्ड में उनकी तादाद 11 बताई गई है। अलखलील की शीशा साजी को 1873 की वियना आलमी नुमाइश में शीशे की आरायशी अशिया के साथ पेश किया गया, जिसने इस रिवायती फन को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराने में अहम किरदार अदा किया। 20वीं सदी में यूरोप से आने वाली फैक्ट्रियों की मसनूआत के मुकाबले सनतकारी और इसराइल की तरफ से आयत करदा नकलो हरकत की पाबंदियों, सियाहत में कमी और बरामदी मसाइल ने अलखलील के रिवायती कारखानों के लिए पैदावार और मंडियों तक रसाई को इंतहाई मुश्किल बना दिया। इस सब के बावजूद अलखलील की शीशा साजी आज भी उन कारीगरों के हाथों जिंदा है जो इस रिवायती पैदावार को जारी रखे हुए हैं। यहाँ तैयार होने वाला शीशे का हर टुकड़ा मिट्टी के खाम माल, कारीगर के तजुर्बे और पुराने तिजारती रास्तों की तारीख को आज के दौर में समेटे हुए है। अलखलील में आग ने शीशे को शक्ल दी और रोशनी रंगों में ढल गई, लेकिन किसी कौम की याददाश्त को संभालने वाली वाहिद चीज़ भट्टी के अंदर का वो दहकता हुआ शीशा ही नहीं था। बाज़ औक़ात माजी किसी कपड़े पर कढ़े हुए रंग बिरंगे धागों में छुपा होता है, कभी किसी खातून की साबिर उंगलियों से बने हिंदसी नमूनों में और कभी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली कढ़ाई के अंदर। तो क्या एक कपड़ा बोल सकता है? क्या एक सुई का निशान, धागे का रंग और एक स्कार्फ का डिज़ाइन किसी कौम के जुग्राफिये, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनकी शनाख्त को बयान कर सकता है? अगले हिस्से में हम फिलिस्तीन की सकाफ़ती तारीख को आग में नहीं बल्कि धागों में तलाश करेंगे। हम शिफिया की बनावट से लेकर रिवायती कढ़ाई, ख़वातीन की मेहनत और इलाकाई शनाख्त तक के एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियाँ।